0: बस अमेजिंग पता नहीं इन्हें क्या एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी हुण यू नो पता नहीं जादू जिहा ही आ। सुनो तो ऐ लगता कि बस भी सुनी चलो तो बंदा थकदा ही नहीं। सो ओके लैके चलते हैं थोड़ा कुछ एक स्पॉन्सर्स को। सरांश जी जुड़ रहे हैं यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो। पहला तो सरांश वेलकम सर, की हाल है?
1: अभी गवर्नमेंट लाइक लोन दे रही है 50,000 से 1,70,000 डॉलर का। आप स्किल डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट का लोन बिना क्रेडिट चेक के बिना गारंटी के हासिल करते हैं। ऐसा लोन आपको कनाडा में नहीं धरती पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 0% है 2 साल तक, और उसके बाद भी 2.5% ब्याज है साल का। और मतलब कितनी देर बाद आप देना स्टार्ट कर रहे हैं लोन को, और लोन 0 से लेके 2.5% है जो कि कहीं नहीं मिलना आपको।
0: सो लोन थोनू सरांश ने लैके देंगे ने, ते ए जो लोन है स्टडी ले है सरांश। सो मेन क्वेश्चन होंदा जेडे लोग सुन रहे हैं कि किनू किनू ये लोन मिल सकता?
1: हाँ जी, पीआर है जिनका स्टेटस प्रोटेक्टेड पर्सन है, या फिर आप मान के चले सिटीजन है, और चाहे सिंगल मदर है, उबर ड्राइवर है, चाहे फुल टाइम जॉब करते हैं, चाहे हाउस वाइफ है। स्किल डेवलप करें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें, और आप स्किल भी हासिल करते हैं, आपको एंड में सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे बिजनेस का कोर्स करें चाहे अकाउंटिंग का करें, और साथ में आप 50,000 से लेके 170,000 डॉलर हासिल करें, और कहीं भी आप उस पैसे को यूज कैसे भी कर सकते हैं।
0: वेरी गुड। एंड

0: कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं और लाइक बिना क्रेडिट चेक 0% पे लोन हासिल करते हैं।
1: सो अच्छा जे बच्चे नहीं तो थोनू और बेनिफिट है।
0: हाँ जी, और बच्चे अगर छोटे ने 11 साल तो और ज्यादा बेनिफिट है, आपकी कॉलेज की फीस थी बाहर ही बाहर कवर हो जाती है लोन आपका सारा।
1: किन्ना दसो थोड़े यार किन्ना फर्क पै जाता जे बच्चे ने।
0: हाँ जी, बच्चे ने अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो उनको आएगा अराउंड $80,000 और उसमें से 80,000 में से 20,000 कॉलेज की फीस चली गई। ठीक है, अगर बच्चे अब मान के चले फैमिली ऑफ फोर है, दो बच्चे हैं और 11 साल से नीचे हैं, तो उनको 1.5 लाख आया, कॉलेज की फीस अलग से कवर हो गई और 1.5 लाख ही उन्होंने वापस करा, 2.5 साल बाद वापस करना स्टार्ट करा। मतलब आपके साफ काम है, 8 साल से कर रहे, कोई डॉक्यूमेंट आपका एडिट नहीं होता इसके अंदर, कोई कमीशन नहीं है, कोई दो नंबर ही काम नहीं है तो कमीशन भी नहीं है, ना कोई सेटिंग है बैंकों में कि पैसे खिला देंगे, कागज नकली लगा देंगे, साफ काम है, साफ तरीके से है। आप आए हमारे ऑफिस में 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, असेसमेंट कराएं एंड लाइक आप देखें आप कितने के लिए एलिजिबल है।
1: ओके, एंड थोड़ी कितनी फीस है?
0: $199 है, $200 काम होने के बाद। लोग पूछते हैं फीस कम क्यों है, भाई साहब कोई सेटिंग नहीं है ना, फिर हम जो बेनिफिट आपको अच्छी तरह पास कर रहे हैं बिना कोई टीका लगाए, तो इसलिए हम इतने थोक के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि कोई हमने टिचूट किसी का, लोगों ने हमारे पैसा जरूर देना है $200-$400, हमने किसी के नहीं देने, तो इसलिए अब साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं। नंबर नोट करें, अभी कॉल करें, असेसमेंट कराएं, काम होने के बाद $200 फीस है और कोई हिडन चार्जेस, मीठी बातें, परसेंटेज नहीं नहीं नहीं है। नंबर 437-264-31-75, 437-264-31-75, उन्हें कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-264-3175, 437-264-31-75,
1: 437-264-3175, 437-264-3175, सरांश का एक नंबर है 437-264-31-75। सरांश बहुत शुक्रिया सर।
0: थैंक यू जी।
1: सो वेरी गुड, सरांश नाल करो गल यार, थोनों बेनीफिट बेनीफिट बेनीफिट ही बेनीफिट हो रहा, तो जरूर थोड़े लिए हाजिर ने मिस्टर सरांश। तो देखो थोनों वधिया यार लोन दवारे ने, पढ़ाई करो अपनी, तुसीं एजुकेशन दे विच वाधा करो, तो वधिया जॉब जूब ते लगो, तो बेनीफिट ही बेनीफिट है। सो ओके, यह तो होगी सरांश हुणां दी गलबात। एक मैं थोनों मल्ली टेंट सर्विसेज का नंबर फिर तो दवा, क्योंकि मल्ली टेंट वाले ने जो टेंट लाता ना थोड़े घर, ऐ लगेगा कि थोड़े घर का बैंकुट हॉल ही बन गया। सो मल्ली टेंट सर्विसेज बहुत ही जबरदस्त टीम, छोटे तो लैके वे साइज तक के सारे टेंट इन्हों को अवेलेबल ने, टेबल चेयर डांस फ्लोर स्टेज बार लाइटा नाल लग्जरी पोर्टेबल वाशरूम। मल्ली टेंट 6479992569, 6479992569। मल्ली टेंट सर्विसेज दी टीम दे नाल तुसी संपर्क करो, ते अपने मनपसंद दे साइज दा टेंट लवाओ, पखे पुखे चाहिए ने सारा कुछ, मैं कहना कोई ऐसी चीज जिहड़ी नहीं करदे। ते मास्टर जूलर दी जिहड़ी ज्वेलरी है ना, सोने दी कोई भी खरीदारी करनी है, ये भी किसी विआह शादी दे फंक्शन लई तुसी हुण होण वाली जिहड़ी बोटी है उहनूं वधिया सोने दे राणी हार आदि लैके देणे आ, तो तुसी एक बार ना मास्टर जूलर की नवी लोकेशन एयरपोर्ट रोड से मेफील्ड 6231 मेफील्ड रोड से जाओ, जो नवा प्लाजा बनया 3000 स्क्वेयर फुट ऐसा एक लग्जरी इन्होंने शोरूम रेडी करवाया ना, बल्ले बल्ले बल्ले। तुसी कहोगे नवी यार क्या कमाल दी ज्वेलरी है, क्या सिलेक्शन है। सो विजिट कर लो ते मास्टर जूलर्स एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड, ब्रांड न्यू, जो नवी लोकेशन हो तो वहीं चाह चढ़ देता। सो जाओ मास्टर ज्वेलर्स से गेड़ा मारो।

सतगुर होई दयाल धसरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होई दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुर होई दयाल ता हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत ते चढ़दी कला वाली शाम दे विच खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु ते मेरे नाल मेरा साथ दे रहे ने हमेशा की तरह गुमनाम। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ।

0: कोशिश करिए कि लंबे चक्कर से बचिए।
1: जी जी,
2: थैंक
1: यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दोस्तों तुसी भी जुड़े हो साढ़े नाल 647-367-5353। सो गलबात साड़ी चाली थोड़ी जी ट्रैक नवा बन गया अज ते आपां गलबात कोई नहीं कर लांगे इस ते ही लो शुरुआत करदे आं आपां एक बड़े खूबसूरत जे गीत दे नाल ते तुहानू जोड़दे आं वधिया जे मजेदार जिहा गीत तुहानू सुनाउणे आं मानक साहब दे नाल तुहानू जोड़दे आं उहनां दा प्यारा जिहा गीत सुनो फिर गलबात नूं आपां अगे तोरांगे।

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 6477066640
1: 647 706 6840।

0: Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: Yaad hai mainu, jadon mera first accident hoya si, kinni pareshan ho gayi si main. Insurance naal deal karna, gaddi paint karana, kinne chanjar. Thanks kar diyan, main Speedex Auto Collision walyan da, jinna ne meri insurance naal khud deal kita, rental car bhi ditti, te meri car nu bilkul navi vargi bana ditta. Te tusi vi poncho, Speedex Auto Collision, 181 Rutherford Road South, Unit 11, te ya call 416-277-9221 416-277-9221.
2: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
3: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
4: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
5: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

चलें हम फैक्ट्री डालते रेडी वास सुन रहे हो, रेडी वास विच मैं हूं अमरदीप सिंह बेनीपाल और ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, यानी कि कोरोना वायरस आया उदों लग गया दुनिया नूं कि बस सब कुछ खत्म आ मलिया मेटा बस खत्म, जे बच गए तो जिंदाबाद नहीं बचे तां कोरोना वायरस दे विच एक बार एक शख्सियत सामने निकल के आई डोनाल्ड ट्रंप, जिहड़ा अपने मुल्क दे शहरियां नूं कह रहा कि 2 to 3 lakh बंदा मर सकदा स्टेज दे उत्ते खड़ा होके, जदों न्यूयॉर्क दे विच लाशां नूं ट्रेलर्स दे विच ढोया जा रहा सी इंसानी लाशां नूं, कोई ये बुचर शॉप दे उपर डिलीवरी नहीं की जा रही सी इंसानी लाशां ट्रेलर्स दे विच 53 फुट दे ट्रेलर्स च भर भर के उन्हां नूं डिस्पोज यानी कि उन्हां नूं अंतिम संस्कार ने जिहड़े ओह कीते जा रहे सी बाहरों बाहर उन्हां दे घरदिआं तों, उस समय ये आदमी फुल सिक्योरिटी दे नाल स्टेज दे उत्ते खड़ के कहिंदा सी करोना वायरस ना दी कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो एवें रौला ही आ। डॉक्टर फॉसी जिहड़ा हैगा हुण ओह हीयरिंग दे अधीन हैगा, जिहड़ा इहनां दा चीफ साइंटिस्ट रहा अमेरिका दा, ते ओह इस समय कांग्रेस अगे सवाल जवाबां दे घेरे दे विच हैगा। फॉसी दे नाल खड़ के इस आदमी ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए ते दुनिया नूं वक्त पाया, उस समय दौरान लोगों ने ब्लैक च समान बेचिया क्योंकि महामारी आ गई सी, लोगों ने रज के पैसा बनाया जिन्हां नूं मैं वड्डे कारपोरेट ते ग्रीडी पीपल कहना हुन्ना, इन्हां ग्रीडी लोगों ने लोगों नूं लुट के पैसा बनाया यानी कि उहदा खाणा पीणे दी सप्लाई बंद कर दो। इत्थे वी सरकारां फेल हो गईआं, मैनूं विंस्टन चर्चिल याद आ जांदा कि जदों सैकिंड वुड वॉर लगता है इंग्लैंड दा इह नामी ग्रामी जिहड़ा इक प्राइम मिनिस्टर होया जिस नूं बहुत प्यार दित्ता जांदा है, चर्चिल एक रेडियो शो दे राहीं अनाउंस करदा है कि बहुत सारे लोग स्टॉक करना शुरू कर चुके ने जिहदे कारण बहुत सारे लोग ने जिन्हां दे घरां च दीवे नहीं बल रहे ते उन्हां दे घरां च हनेरे ने, मतलब वो कुछ भी खरीद नहीं पा रहे, उन्हां दी अप्रोच खत्म हो गई। मेरी आप सब नूं बेनती है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन द ग्रेट ब्रिटेन असी तुहानूं कहिंदे आ कि तुसीं जिहड़ा हैगा एक्सट्रा स्टोरेज करनी बंद कर दिओ, लोड़ दीआं ही चीज़ां खरीदो ता जो सप्लाई चेन बनी रहे। उस समय दे दौरान विंस्टन चर्चिल अगली सवेर जदों पार्लीमेंट वल जा रहा सीगा ते बड़ा स्ट्रैसफुल माहौल सी, इंग्लैंड इस लड़ाई दे विच घिर चुकिया सी सारे पासियां तों, अमेरिका भी आ चुकिया सी इहदे विच, ते उस समय जैपनीज़ ते जिहड़े यूरोप दे विचों ही बागी खड़े होए होए जर्मन ने काफ़ी नुकसान कर दिते सी सारिआं दे, ते उस समय जदों विंस्टन चर्चिल जा रहा वो देखता कि एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी, बड़ा दुख होया ते ड्राइवर नूं कहा कि तुसीं गड्डी रोको मैं इन्हां कोल जाके आउणा, जाके इन्हां नूं कह के आउणा कि कल मैं एड्डी वड्डी स्पीच दित्ती इन्नी भावुक होके जो मुल्क प्रति वफादारी लई सी, जो मुल्क प्रति सिटीजनशिप की बनती रिसपोंसीबिलिटी की सी, बहुत सारे लोग नवें उतरते हैं इस मुल्क दे विच वो अपने अधिकार जानते ने अपनी जिम्मेवारी नहीं जानते इस मुल्क के प्रति। मैं कई बार कहना हुंदा कि जस्टिन ट्रूडो ने गलत कुछ नहीं किया, उन्हें क्या 1988 के दहाकों के जोड़े लोग भारत तो इतने उतरे से उन्होंने होटल्स तो लैके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो लैके हर सैक्टर के ग्रोसरी स्टोर तो लैके हर चीज़ के उन्होंने महारत हासिल की, तो उन्होंने एक अंपायर वांगू के बिजनेस खड़े कर दते जिन्हें मल्टीपल जॉब्स अज भी चल रही ने। कल मैं धालीवाल साहब के नाल सी, उन्होंने होटल्स बनाए, उन्होंने मैडिकल बिल्डिंग्स तैयार कीतियां, इन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, डॉक्टर ते बिजनेस पर्सनैलिटीज़ बनाए, बड़ा कुछ किया इन्होंने लोगों ने इतने, ये 1988 के दहाकों के आए लोग ने। ट्रूडो सोच रहा है कि मेरे प्यो के टाइम के उत्ते लोग आए थे तो मेरे प्यो की पीयर ट्रूडो की जी है चमक दमक का कारण बने से कि लोगों ने आके इतने जॉब जनरेट किए जॉब की निकलियाँ। सो ट्रूडो फस गया, जिहड़े आ नवें बुलाए जिन्हां नूं ये पता भी दुपहरे 12 बजे तक उठ नहीं हुंदा, अखां चों गिड़ नहीं कड हुंदी, सवेरे तक सौ नहीं हुंदा, धरना लवा दो। कैलगरी दे धरने दे विच इन्हां चों आए हुए लोग घंटे च पताश दे पत्तियां वांगू खड़ाते, जिहड़े मुल्क दे प्रशासन नूं इस मुल्क दे सिस्टम नूं थुकदे सी अज थुक के चट्टण लई मजबूर हो चुके ने, यानी कि ये लोग इज्जत नहीं करते सी। जिंदगी च एक चीज़ याद रखो, जिहड़ा बंदा अपने माँ प्यो की इज्जत नहीं करता उहदे तों इज्जत तुसी अपने लई बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि तुहाडी भी करूगा। सो इस तरह के जिहड़े लोग आए इन्हां ने इन्हां च गुस्से बहुत सी, इन्हां च बहुत कुछ, इन्हां च हंकार बहुत सी, ते मैं दुख नाल भी कह रहा ते मैनूं अफसोस भी हुंदा जदों टोरंटो स्टार दा आर्टिकल सवेरे पढ़ रहा सी कि केयर गिवर ने बंदे 2-2, 3-3 साल तो बैठे ने, कोई परिवार किसी कंट्री तो आया, कोई किसी कंट्री तो, ते वो लोग हुण वापस जा रहे ने
ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸਪੈਟੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਮਾਮੇ ਆ ਗਏ, ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਅੱਜ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਟ ਟੁੱਟ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਖਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੈਂਟ ਚੁਕਾ ਤੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: परोसेमन सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: 98
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: चूहा ते कॉकरोच भी। सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
1: है। फिर कॉकरोच ते चूहे, वो हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरे पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरों बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कढो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
3: मैनूं पता तुहाडी।
4: Let's go to the X.
5: The CNE Grand 50/50 is on now. Get your tickets today at CNEF5050.com for more chances to win big and support a great cause. You could take home the guaranteed minimum grand prize of $250,000 or even more as the prize grows. Every ticket helps fund the CNE Foundation's community and youth programs. Please play responsibly. License RAF 156-8077.
6: Come and celebrate Toronto and do everything you want at the X.
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: करो, कदों तक किसके राय दे छोटे जे घर च रहवांगे।
1: ओए बस, मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नू कॉल करन तक।
2: तुसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, इक्विटी टेक आउट, प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
3: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो, तो मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नू जरूर मिलो। नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बां, तो मॉर्गेज तो नहीं हो सकती ना।
2: या कॉल करो 647-294-5503, 647-294-5503।
3: भरोसे अते विश्वास वाला नाम नरदेव सिद्धू, लाइसेंस नंबर 10530, nardevsiddhu.com।
4: की थानू किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ले मॉर्गेज दी लोड है, जिवे फर्स्ट और सेकंड मॉर्गेज, परचेज और रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हो,
5: तो फिक्र क्यों कर दे हो। नीलम सिद्धू कोल है सॉल्यूशंस फॉर एवरी सिचुएशन।
4: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट, इंपेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
5: इना कोल नहीं, एबी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स।
4: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
5: आज ही कॉल करो नीलम सिद्धू नो
4: 647-739-8710, 647-739-8710, लाइसेंस नंबर M2000-3450।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी सुन लो मेरी गल मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है फिर कॉकरोच ते चूहे वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी
1: मैं तेरे पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना चूहे कॉकरोचां नू कड्डो टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो जेडे छोटे तो छोटे घर तो लेके वड्डिया बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट होटल्स मोटल्स नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट

0: खास रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटल ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
1: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।